0: Nightlife on Sunrise.
1: कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
2: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
3: शायद समझ नहीं आएगी पर याद रह जाएगी.
4: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday 7:30 PM only on Colors TV.
5: Right, 24 after 8. Well done, Raj in Wembley. First one and only one to get it right this morning. Before we get to the clues, let's play it one more time for you.

0: सैयारा का ये गाना विशाल मिश्रा हंसिका पारिक की आवाज में। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। से आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह 6 अगस्त की सुबह शबनम साही के साथ। यहाँ भी आप सुन रहे हैं, जो भी सत कर रहे हैं, होप यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग। Don't miss South Hole Travel special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southholetravel.co.uk today. Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya.
1: Time for today's foodie question. Originating in eastern India, which iconic sweet consists of spongy, white balls of cotton cheese cooked in a clear, sweet, sugary syrup? It's a favorite for weddings and festivals. WhatsApp the studio now, 07925-700-272.
0: This daily food feature was brought to you by Suhana Foodies. Try their kappa poha, jaggery powder, turmeric latte mix and spice mixes like butter chicken and paneer makhanwala in stores nationwide. Suhana, maza aa gaya. थर्सडे द 6 अगस्त आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ। ऑन द अदर साइड कहते हैं कि जीवन संघर्ष का नाम है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, एंड येट हु न्यू दैट संघर्ष कुड साउंड सो स्वीट, राइट?
2: पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए रब मैं प्यार।
0: सोनू निगम, श्रद्धा पंडित, दिल का करार ऑन द अदर साइड।
3: Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV. Lights on, hot seat ready, Amitabh Bachchan ready. Yes, it's back. Your favorite game show, Kaun Banega Karodpati, is back. Starts Monday 9 PM only on Sony TV.
0: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना,
4: वसीम ज्वेलर्स।
5: डैड, वेयर हैव यू बीन?
4: आई वेंट टू सुपरमार्केट, स्नैक शैक चाहिए थी, बिग क्रिकेट मैच टुडे ऑन टीवी एंड मूवी आफ्टरवर्ड्स।
5: वी हैड पॉपकॉर्न एंड क्रिस्प्स। डैड,
4: आई एम अ देसी, आई नीड माय इंडियन स्नैक्स। सुपरमार्केट विद चटवाल मिले?
5: अंकल चटवाल?
4: नहीं, चटवाल दे नमकीन रेंज, प्लेन भुजिया, आलू भुजिया, खट्टा मीठा, नींबू मसाला, नवरत्न मिक्स एंड मूंग दाल। ओए, मैं फुल सिलेक्शन चख ले आया।
1: चटवाल्स मजेदार स्पाइसी इंडियन स्नैक्स, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, नाउ available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
0: लोग कहते हैं ना, एक से भले दो, जस भी ऐसा ही कुछ सोचता था, बट एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड को लेके जस के लाइफ में डबल इश्क और डबल ट्रबल। क्यों? क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है, ओनली ऑन Z5.
6: दिल चोरी साडा हो गया।
0: आफ्टर द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ हिज 2024 UK टूर, दिल चोरी साडा हो गया इज बैक। वन सोल्ड आउट शो ऑलरेडी इन लंदन, अनदर शो अनाउंस्ड इन लंदन ऑन पब्लिक डिमांड। पेपेस पिरी पिरी प्रेजेंट्स एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद द किंग ऑफ सोलफुल पंजाबी, हंसराज हंस, लाइव इन लंदन ऑन संडे 11th October एट बेक थिएटर हेज, सोल्ड आउट। सेकेंड शो ऑन सैटरडे 10th October एट द सोफिटल होटल लंदन हीथ्रो। डोर्स ओपन एट 6:30 PM। बुक योर सीट्स फ्रॉम Eventbrite. एक्सपीरियंस द टाइमलेस हिट्स, द मैजिकल वॉइस एंड एन इवनिंग फुल ऑफ इमोशन, नॉस्टैल्जिया एंड एंटरटेनमेंट, सपोर्टेड बाय मधुस। कॉल 0785074-2143। हंसराज हंस लाइव एट बेक थिएटर हेज एंड सोफिटल होटल हीथ्रो, डोंट मिस इट। रेडियो पार्टनर सनराइज रेडियो, टीवी पार्टनर पंजाब टीवी, ब्रॉट टू यू बाय समारा इवेंट्स UK एंड टॉप Notch Studio.
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
8: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
8: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait. How can I help?
8: You can help me celebrate. I won.
9: Feel the fun. Play Ojo.
8: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
3: Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV. Lights on. Hot seat ready. Amitabh Bachchan ready. Yes, it's back. Your favorite game show, Kaun Banega Karodpati, is back. Starts Monday 9 p.m. only on Sony TV. Sunrise
9: Radio. Happy birthday to American film director and screenwriter M. Night Shyamalan. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate with delicious mithai from Ambala Sweets.
10: Birthday greetings from Ambala Sweets, serving the community for 60 years. Order online right now and get 10% off your order with code SUNRISE10. Stock up on fresh laddu, barfi, gulab jamun and ras malai, plus beautifully presented mithai gift tins. Order now, save now. Limited time offer and enjoy the taste you love with SUNRISE10 at ambala.co.uk.

0: Taken from Mission Majnu, starring Rashmika Mandana and Siddharth Malhotra. Jubi Nautiyal. Rabba Janda. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे द 6th ऑफ अगस्त की सुबह शबनम साही के साथ. गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
2: ये है संगम. पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम.
0: अ हाउस फुल ऑफ केओस, अ गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स. वॉच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ लव, फैमिली एंड इमोशंस. वॉच बरेली की बच्चन मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour, first play on this show, it's a brand new song, Satinder Sartaaj, Nazma Dipal ki. जहां भी आप सुन रहे हो, hope you're having a beautiful Thursday.

आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आस की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।